0: रखड़ी सते पाशाह जी महाराज
1: जी गुरु गोबिंद अंतरजाम सच्चे पातशाह जी महाराज जो धन धन साहिब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी पावन दरबार तक श्री हजूर साहब विखे कीर्तन की हाजरी पढ़ते हुए आप जी संताओ लो बेअंत माया हाजिर हुई जिस खजाने चो माया हाजिर हुई है सुख जाने पर पूर करने गुरसिखी नामदान की बख्शिश करनी यात्रा सफली करनी।

नानक दास तेरी शरणाई वर सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया सदा सदा बल्ले हारे तो दिया गया

श्रीमान संत बाबा कुलवंत सिंह जी की देर उगता चढ़दी कला लई संत बाबा जीत सिंह जी निर्मल कुटिया जोला वालों माया आदर होई पातशाह कृपा करनी महापुरखा नु दीर्घ आयु देर उगता चढ़दी कला बख्शनी सरदार गुरतेज सिंह भुलार आए सरदार सतपाल सिंह जी मुल्तानी 5001 रुपए आदर कर दे पातशाह कृपा करनी परिवार विच सुख शांति देर उगता चढ़दी कला बख्शनी बेअंत संगत वालों आप जी दे हजूरी विच अमृत वेले तो इस समय तक सोहने सोहने रुमाले अते शरदा दे फुल

करो जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा निधान सिंह जी, सचखंड वासी संत बाबा हरनाम सिंह जी, सचखंड वासी संत बाबा आत्मा सिंह जी, सचखंड वासी संत बाबा शीशा सिंह जी, इन्हों चार महापुरखों की सालाना बरसी गुरुद्वारा लंगर साहब विखे महापुरखा वालों मनाई जा रही है। सवेर तो ही सोने दीवान सजन गए, गुरु जस कीर्तन होवेगा, गुरु के लंगर रातों टवरतन गए। सो समूह संगत

चेत आवे, चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फतह, चौकिया टंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा दी सावे बुलारे। खालसे जी नु नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध विवेक रात रक्षा दान। खालसे जी नु श्री हरिमंदर साहिब अमृत।

0: हो जावे। सत श्री अकाल गुरबर अकाल देग तेग फतेह गुरु पंथ खालसे जी दिनो दिन चढ़दी कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज।
1: गुरु प्यारी सात संगत जी हुण धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी लड़ी बार कथा विचार होवेगी। कथा विचारां नूं सरवण करके अपना जीवन सफला करो जी।

ऐसे दिन प्रताप के दिन बड़े तीन लोग जय जय करे नाम जब जब पूरा सकल द्वार को छाड़ के द्वार द्वार पाएंगे की लाज राज करेगा खालसा की रहने को एक बार वैसे मिलेंगे उनकी स्वामिलज की करकुड़ा पासा डंका बाजे फदे का नेक चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं बहुत सुभंग सरदास दुकाल मरना सिद्धियाल स्वरूपे सदा अंग संगे अब देख देखो फतेह नानक गुरु गोविंद सिंह काल दरबार में तेरे दरबार साधन निरंकार।

तौ प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सूर्य सुरदार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जर जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के बलि वेद नवशीष न जात बिचारे एते भय तो कहाँ भय भूपत अंत कौ नंग ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवे के भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान।

और आहार जति जद्धार सब ऐसो विचार हजारख देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में गर पर्वत पंख हल्ला न हल्लाएंगे तोर अरीन मरोर मवासत माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़ी अरब चारे सार की धार बछैया तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलिया गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाजक अनेक सु एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाजर भूत भविख भगवान जपेंगे जीव जिति जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात धुन पापन के वो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसंग फिरा जाग सत्र सभ अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादिव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोटि स्नान गजा दिगदान अनेक स्वंबर साज बरे

भयो जो धू लोचन मूंद कै बैठ रहियो भग ध्यान लगायो नहात फिरियो लिए सास समुन्द्रा न लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसो बैठ बितायो साच कहो।

अन बीज रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू बृद भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब था पियो यह थाप अनखेद भेद अशेद मुखचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार भगत बयंत अन बीज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कूट इंद्र नृपार के ब्रह्म विषण विचार के राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सेंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ काच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार गुहार।

गयागन होत्र करांत कई उर्ध ताप दुरांत कई उर्ध बाव संन्यात कौ जोग भेष उदात कौ नीली करम करांत कौ पौन आहार दुरांत कौ तीरथ दान अपार कौ जग करम उदार कौ अगन होत्र अनूप कौ न्याय राज विभूत कौ शास्त्र सिमृत रीत कौ वेद शिव विपरीत कई देश देश निरांत कई एक ठौर स्थान्त कौ करत जल मह जाप कौ सहत तन परताप कौ बाज बनह करंत कौ ताप तनह सहंत।

हरि गुफे हरि शिते हरि नभे हरि इहा हरि उहा हरि जिमे हरि जमा हरि अलेख हरि अभेघ हरि अदोघ हरि अद्वैघ हरि अकाल हरि अकाल हरि अशेष हरि हरि हरि अयंत्र हरि अयंत्र हरि तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि असोग हरि अपर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अशेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अपेव हरि अजेव हरि अशेव हरि पजु हरि थपु हरि तपु हरि जपु हरि जलस्तु ही थलस्तु ही नदिस्तु ही नदस्तु ही वृक्षस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही ऊर्ध्वस्तु ही पजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमीतु ही जमातु ही मकीतु ही मकातु ही अभूतु ही अपहतु ही अशूतु ही अशातु ही जतस्तु ही व्रतस्तु ही गतस्तु ही।

फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करी ओई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज, इंद्र सुना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी, सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल पास के अधीन, सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु कृत वेद और पुराण कृत सिमृत सबुहन कह हो बिताए है। मोन जी मदार के ते असुनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भय है। पीर और पिकामर के ते गणना परत ते भूमि रे हो कबीर भूमि ही मिलाए है। युग यति ब्रह्मचारी बड़े बड़े क्षत्रधारी, क्षत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कत क्षत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिले सर दुर्योधन से मान धारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। शीश दे करे अनेक तूपती कपट भेष पोष दी, अनेक दान वावत है शीश को। का भयो मल जप काढ़त अनेक दंड, सोतो न दंडौत अस टांग अथ तीस को। का भयो रोगी जप डरय उदमुख, मुख तेना मन तेना मुन निहरायो आदेश को। कामना दीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कट जग कान में खजूर धस, मुंड छट कट मित्र पुत्र हूँ के शोक सो। आकु चरैया फल फूल को बसिया, तदा बन को ब्रह्मया और दूसरो न भोग सो। का भयो बेड़ जो घस से वृषण सो, माटी को बछिया बोल पूछ लीजा जोग सो। कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण, एक भावना बीन कैसे भेटे पर लोक सो। नाची करत मोर दादर करत शोर, सदा घन घोर घन करी करत है। एक पाय ठाटे सदा बन में रहत ब्रछ, फूक फूक पांव भूम श्रावक धरत है। पहन अनेक जुग एक ठोर बात कर, काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के बीन महादान में न हुजा लीन, भावना यकीन दीन कैसे क्या तरत है। जैसे एक स्वंग को जोगिया बैरागी बने, कब हूँ संन्यास भेद वन को दिखावई। कहूँ पौन हरी कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगाए बारी, कहूँ दंडधारी हो क्या लोगन प्रभावई। कामना दीन पर नाचत है नाचन सो, ज्ञान के विहीन कथे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल, कुंचर और गदहा अनेक दा पुकार ही। का भयो जब कल वत्र लियो कांसी बीच, चीर चीर चोर ठाकुर ठारन सोमार ही। का भयो फांसी डार बुड़ जड़ गंग धार, डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार, भावना बीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जब पाइया तापना, तापना अनेक तन कहल सहत है। जाप के कीर्ति जो पपायत अजाप देव, पूजना सदीव तू ही उचरत है। नव के उडित जप नारायण पाइयत, अनल आकाश पंछी डोल बु करत है। आग में जरित गत राण की परत, कल पताल के बासी के भुजंग ना तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी, भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बु। हिंदू तुरक को राफ जी इमाम, साफी मानस की जा सब एक पहचान बु। करता करीम सुई राजक रहीम, ओई दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्मान बु। एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबू। देव राम सी सुई पूजा निवाज, हुई मान सब एक पे अनेक भ्रमाव है। देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू, न्यारे न्यारे देश देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बैन, खाक बाद आतस आव कुरलाव है। अल्लाह अब एक सुई पुराना कुरान, उई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कूट आग उठे, नारे नारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग
अनंत सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाएंगे। केते गच्छ मच केते उन्न का करत पछ केते अच्छ बच होए तो पछ उड़ जाएंगे। केते न बीच अच्छ पछ का करंग पछ केतक प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाएंगे। जल कहा थल कहा गग

ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाएंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंगवासी किते मदिना मक्का निवासी केतक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहद किते भूम में गड़त किते सुआ पे चढ़त किते दुख भरत है। ज्ञान न उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के भीन जग जा रही मरत है। सोध हरे देवता विरोध हरे दानो बटे बोध हरे बोधक प्रबोध हरे जापसी घस हरे चंदन गाय हरे चुआचार पूज हरे पहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे घोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे विदन।

अखंड प्रतापात अच्छा विभूते न जन्म न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेयंग स नेयंग स नाथे उडंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे तो भूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण न रंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेयंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अशय आद अद्वै अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अशेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पाहंग न रूपंग न पुहपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न परासंग न पेहदंग न परमंग सदैव सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निर्युक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अशयाद अविक्ते अथापे विभुक्तंग अशयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सुखंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न सर्मंग न साकी न भर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न बाकी न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहु कंच के मंज के परम पुहले कहु रंग के राज के धर्म अलूले कहु देत के भेद के धर्म धामे कहु राज के साज के बाजता में कहु अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहु सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहु अंग के रंग के संग देखे कहु जंग के रंग पेखे कहु धर्म के कर्म के हरम जाने कहु धर्म के कर्म के परम माने कहु चार चेष्टा कहु चित्र रूपं कहु परम प्रज्ञा कहु सर्वभूपं कहु नेह गृहं कहु देह दुखं कहु औषधि रोगे सुख सुखं कहु देव विद्या कहु दैत वाणी कहु यक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सात की तामसी हो कहु योग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु योग युक्तं कहु भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जच विद्याधरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या कहु वेद विद्या कहु व्योम वाणी कहु कुह की कब कथा कहानी कहु आदर सारंग कहु भद्र रूपं कहु मद्र वाणी कहु शुद्र स्वरूपं कहु देव कहु वेद विद्या कहु काव रूपं कहु चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहु परम पुराण कहु पार पावे कहु बैठ कुरान के गीत गावे कहु शुद्ध सिकं कहु ब्रह्म धर्मं कहु वृद्ध अवस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु योग पोहगं कहु रोग रागं कहु रोग हरता कहु भोग त्यागं कहु राज साजं कहु राज रीतं कहु पूरण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु आरबी तोर की पारसी हो कहु पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहु देश वाख्या कहु देव वाणी कहु राज विद्या कहु राजधानी कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र सारंग कहु यंत्र रेतं कहु शस्त्र तारंग कहु ओम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगला चारणी गीत चर्चा कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मलिज पाख्या कहु वेद रीतं कहु नृत्य विद्या कहु नागवाणी कहु गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहु अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहु वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहु शैल शाला धरे शत्रधारी कहु राज साजंग

तेज अंकुट भंडार दाता धुरंधर भंग प्रकार अनभूत तेज अंश जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योत पान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं परम पेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं भरग प्याज जय रोग सुख नहीं सत्र साध जृता स्वास नहीं देह नाश जय आज अंत नहीं रूप रास जय रोग सुख नहीं जोग जुग जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अक्षत रूप अखा भंग जय नेत नेत उजरंत वेद जय अलग रूप कथत कतिव जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित अच्छा।

कई पौन आहार कई करत कूड़ मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भक्ष नहीं तदम देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गाद गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत तू वेद रीत ज्ञान कर्म को अगन होत्र को तीरत।

कई तीरथ तीरथ भरम सुपरम, कई अग्नहोत्र कई देव करम, कई करत वीर विद्या विचार नीत दप्तास पायत ना पार, कौ राज रीत कौ जोग धरम, कौ सिमृत शास्त्र उचरसु करम, न्यूली आद करम कौ हस्त दान, कौ असु मेध मको बखान, कौ करत ब्रह्म विद्या विचार, कौ जोग रीत कौ बिरध चार, कौ करत जक्ष गंधर्व गान, कौ धूप दीप कहु अर्घ दान, कौ पितृ करम कौ वेद रीत, कौ नृत नाच कौ गान गीत, कौ करत शास्त्र सिमृत विच उचार, कई भजत एक भगन।

अनुभव पद आप प्रचंड दियो। श्री सिंदूर बिंद नगिंद नगंग श्री जाक्षगंध फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सीतज उत्त भुजंग किय देव अदेव सराज पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रवजातना पातना जूजुतंग जेतात्ना मातना प्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग पुअंग जय जंप किन्नर जाक्ष जुवंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांत गणं बहुभूत भविक भवान तुवं जे अंडज सीतज जीर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बलि बंजास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास छितंग रच रो रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत दान ज्योत चांद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय अखंड अखंड प्रचंड किए जय शत्रु उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार बचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अनधूत अभूत अशूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अशेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सूग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सुरंग जय बंद देव अदेव नरंग गण किन्नर जच्छ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भांज प्रभा अन गांज मृतंग जय पारण पावत पूर मतंग अन खंड अप्तरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत।

अधिक अशेक अभिक है सदैव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के बिख है सदैव करम भरम है अद्वैक है अभिक है अलेख नाथ जानी है सदैव।

है न तंत्र को बनाओ है न शल है न छिद्र है न छाय को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल अखन।

ना शीत है ना सोच है ना घ्राम है ना घाम है, ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है, ना देव है ना दैत्य है, ना नर को स्वरूप है, ना शल है ना छिद्र है ना

एक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चहन भरण है बेअंत है अनंत तेज जानिया अभूम अभिज है सदा अच्छे जित।

जाच्छ किन्नर मच्छ मानस मुरग उरग अपार नेत नेत पुकारी थी सकर आमुख चार सरब सपत पतार के तर जाप ही जिह जाप आदेव अगाध तेज अनाद मूरत अताप जांत्र मंत्रणा वही कर तंत्र मंत्रणा कीन सरब ठौर रहियो विराज धिराज राज प्रवीण जाच गंधर्व देवदानो ना ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैष्णव के बिखै बिराजा शूद्र भी वह नाये गुड़ गौण न पिहिल पिहर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस ना मध्य उरध ना भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर जात न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपद पतार के तर जानिया जह ज्योत शेष नाम शाम सपन्द नेत पूरण होत सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकव

भूत भप भवान भूपत आदनाथ अनाथ अगन वाय जले थले महे सर्वठौर निवास देह गेहना नेह स्नेह अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व भर्ता सर्व दयाल अद्वेख चक्र चिन्ह वरण जाको जात पात ना भेख रूप एक न रंग जाको राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व

दीन बंद प्रभीन श्री पर सर्व को करतार बरन चेहना जत्र जा को चक्र केहन अकार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेख ना बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूव को भरण दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्टि करता जगत में

देवादेव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम अकाल जले थले महे मानिया जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरता पुष्ट दुष्ट हरनां पुष्ट करनां सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव अखंड भूम आकाश जले थले महे जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदेव अपार त्रिपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न दाता ज्ञान गाता सर्वमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उप इंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावई तिव्रद्र मुखचार कोट इंद्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न मध जागो भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महा मुन गाय गंधर्व अपार हार हार थके सब नहीं पाई देह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब करकोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच अपच्छर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार तो प्रसाद दुहरा एक समय श्री आत्मा उचरियो मत सिउपैन।

का रंग राजा कवन हरख सुख है कवन को रोगी रागी कवन कहोता तुम्हें कतवन दूहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहा सृष्ट को विचार कवन त्रिष्ट को भ्रष्ट है कह

दुर्यंदल डंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंडन आदि वृते चचरासुर मारण पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खांड उदंडे अलखमते जय जय हो सी महासुर मर्दन राम कपर्दन शत्रशिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंडन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विध्वंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अधम उदाहरण ऊर्ध अधे जय जय हो सी महासुर मर्दन राम कपर्दन आदि वृते डावरु डवंक बबर बवंक पुझा फरंक तेज बरंग लंगुड़िया फांध आवेद बांध सैन्य मर्दन काल असुरंग अष्टायद चमक उखण दमक अतिसुत झमक फुंक फनंग जय जय उसी में खासुर मर्दन राम कपर्दन जात जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम निदमंकन ध्वजा परंकन फणी फुंकारन जोत जिते सरदार विबरकन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय उसी में खासुर मर्दन भूम आकाश तल उर्ध अधे दामनी प्रहासन सुछब निवासन सृष्टि प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुराचन युद्ध प्रमाचन निर्दय नराचन धरम भृते त्रोणांत अचिंती अनल बिवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मै खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्टि उबारण शोध मते पणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सैति स्नान अष्ट प्रवान भूल निवान तेज अतुलंग जय जय होसी मैं खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छुर हारं धूम दुखारं द्रवमते दारवी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय होसी मैं खासुर।

सुदता समर्पण तरक बितरकण तपत प्रतापण जप जीवे जय जय उसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभि चंचला जखंगी अलग भुजंगी तोंद तुरंगण तुतिच्छ सरे करकसा कुठारी नरक निवारी अधम उधारी तूर भुजे दामने दमंगे के हर लंगे आद अतंके क्रूर कथे जय जय उति रक्ता सुर खंडन सोम्भ चक्रत्न सोम्भ मते बारद बिलोचन बृतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामने प्रहासे सुख करना से सुभृत सुभा से दुष्ट करसे चंचला प्रियंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंग

रंभा भाजा सुना सुरंग कोकल सुन लाजा कर बेग भाजा सुख उप राजा माधुरंग दुर्जन दल दज्ज है मंथन रिज है सब न पज्जारोह रणंग जय जय उसी मह खासुर मंड मर्दन चंड चक्र तन आदि गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष आरोधन क्रूर बिते धुमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विध्वंसन शोधमते जाल पजयंती शत्रु मतंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ गति जय जय होती रक्तासुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गति खत्रियान खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गति प्रलाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद गति सुर नर प्रतपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मह का सुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाश से उन्तन्ना से ज्योत प्रकाश से अतुल बले दानी प्रकर खण सर्वर वर्खण दुष्ट प्रदर्खण बितल तले अष्टायद बाहन भूल निबान संत प्राण गूढ़ गति जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध भृति दुग दुग प्रबक्षण सेवक रक्षण संत प्रदक्षण सो

जय जय होसी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतिली तोंद मते अष्टाद चमकण शास्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुग डुगी दमंका बाग दमंका पुजा फरंका शोध गते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद युगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक बटे पापान दिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारण नरक निवार पतित उधार मुंड मथे जय जय होसी महकासुर मर्दन धूम्र विधंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दानव अर्दन बिड़ाल बधे सरदार विभरखण दुर्जन धरखण अतुल अम

कहा कहो यथा मत्रण तंत्र कर्ता करीम का दर कृपाल अद्वै भूत अनभय दयाल दाता दुरंदुग दोग राज्य नेत नेत्र वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जांत जानंत जाहे मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पद्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सेवंत कई पलट सूर सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै का लखाए अनखिज तेज अनभय प्रकाश।

विशाल अंजन विहीन अनभंज नाथ जल तल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात निभेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अबचल अप

जैसा त्रिमैत्र नहीं पुत्र भ्रात, करना निधान कारण स्वरूप, यह चक्र चिहन नहीं रंग रूप, यह खेद भेद नहीं कर्म काल, सब जीव जंत की करत पाल, ऊर्ध्वं बृहत् सिद्धं स्वरूप, बुद्धं अपाल युद्धं अनूप, यह रूप रेग्नि रंग राग अंशिज तेज अनभिज अदाग जल थल मही।

कईकोट इंद्र जयपानहार, कईकोट रुद्र जुग्या दुवार, कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत, यह नित नित नित दिन उचरंत, तौ प्रसाद सवैये दीनन की प्रतिपाल कर निसंत उबार गनी मन गार पक्ष पशु नग नाग नरादिप सर्व समय सबको प्रतिपार पोखत है जल में थल में पल में कल के निकरम विचार दीन दयाल दया निर्दोखत देखत है।

पद्मापद वेद कते अभेद उचारा रोजी राज बलोकत राजिक रूख रुहान की रोजी ना टारा कीट पतंग कुरंग कुजंगम भूत भविक भवान बनाए देव अदेव खपे अहं मेव ना भेव लखे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कदेव कुरान हसे ठके करहात नाए पूरण प्रेम प्रभाव बिना पद शिव किन श्री पद्मापत पाए आज अनंत अगाध अद्वैक्ष भूत भविक भवान अभय है अंतविहीन अनातम आप अदाग अदोग अशिद्र अशय है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है दीन दया दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न पह है देह विहीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त अगेह अशह है जान को दीद अजान को दीद जमीन को दीद जवान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत लह रोगन ते अर्थ उगन ते जल जोगन ते बहुभांत बचाव सत्र अनेक जलावत घाव तो उतन एक न लागन पावे राखत है अपनो करता कर पाप।

जाचु भुजंग सुदानव देव अभेव तुम सभी कर त्याव भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिर्व पाय सक नि पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बताव खोज थके सभी खुजिया सुरहार परिहर हाथ न आव नारसे चतुरानंद से रूम नारिक से सबू मिल गायो वेद गदेव न वेद लख्यो सभार परे हर हाथ नायो पाय सकने पार उमापत सिद्ध सनाद सनंतन त्यायो त्यां तरो तेह को मन में जह को अमितोज सब जगशायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब।

चलैया चित छत्र के धरैया छत्रधारियों के चलैया माँ सतरण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है सुध के दितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हु के मान है ज्ञान हु के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हु के काल महाकाल हु के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमल गुर गर देज गुण गावे तेरे नाम है युग युग साध पौन साधना की तेग बाध आरब के आर भी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी मान कुंधारी कुलेसी जान पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरहटा मेले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ तिलंगी पहचान तरम धाम है बंग के बंगाले फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के जल वाली तेरी आगे में चलत है रूह के रोहन मग देश के मगेल वीर बंग से बुंदे ने पाप पुंज को मलत है गोखा गोरंगा व चीन मचीन के तीस ने वह तिबते ध्याय दोग देह के दलत है जिना तो आयो तिना पूरा न प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेद कहियत है रंग में रगीन राग रूप में प्रवीण और कहु पे न दीन साध अधीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछ पहुंचत ताहे चीट की चिंगार पहले ही सुनियत है कित इंद्र द्वार कित ब्रह्मा मुख चार कित कृष्णा अवतार कित राम कहियत है कित सतरासी कित सूरज प्रकाश कित मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है कित महादीन कित ब्यास प्रवीण कित कुमेर कुलीन कित जक्ष कहियत है करते है विचार पहला पूरा न को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है पूरा न अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै पार के बखानिया है अद्वै विनाधि परम पूरण प्रकाश महारूप गिरा से अनासी क्या कमानिया जंत्र हुना जाजा की बापु न मायता की पूरण प्रभा की सुचता के अमान मानिया तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र क्या गजानिया तेज को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है के रूप को रूप है को मत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अशय विनाशी है काम को गिरिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल गु के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को पुकत है के वृद्धता की बासी है जोग को जंत्र है के तेज को संत्र है के मोहनी को मंत्र है के पुराण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध को बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभिव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को पतैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है चेड को प्रचंड है अख

0: जय जयकार जय जयकार होवे।
1: वेद रूप धर आए,
0: इस तरह चार वेद वो अपना रूप धारण करके आए हन
1: कृष्ण के पास।
0: जिस तरह प्यारे चार वेद कृष्ण भगवान जी दे कोल द्वापर दे विच चल करके गए।
1: शुक्र गणेश सपत
0: ते देवतियां दा गुरु जेड़ा शुक्र जेड़ा है शुक्र जेड़ा हो गया ते गणेश आदिक हो गया। बृहस्पति दैतां दा गुरु शुक्राचार्य आदिक
1: थिरे गगन मै हेरन गुर सिख।
0: इस तरह प्यारियो थिरे गगन मै कई गुरमुख प्यारे गुरु कह सिख प्यारियो उन्हां नू ए दिव्य ज्ञान जिन्हां नू हो गया वह वेखदे कि आकाश मंडल दे विच भाई लगता कि यह गुप्त रूहां जिहड़ियां हन यह तरह तरह के देवी देवते महापुरख यह सूक्ष्म रूप धारण करके आए।
1: कुलाहल सहत प्रकाश
0: उत्थे प्यारियो देव मंडल आकाश मंडल दे विच

पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब है कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास नवरिए पूजो सदा हमारे पच्छा श्री असधुज ज्यों करियह रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पपधरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रगा

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह पद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। छींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने।

रच दीनी। काहूं फूल राजा है बैठा, काहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे सुधुजता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह ऐ हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर

ग्रंथ करा पूरण सब राता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अद्वज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशत फल पावे सोई, दुख नाथ सह।

चौपाई सम सतरै सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रववारा तीर सतद्रव ग्रंथ।